0: 101.3. Work from home. High salary. Just ఒక క్లిక్ లో. అరే వా,
1: చిక్కుకుంది.
2: తెలియని లింక్స్ ని క్లిక్ చేయకండి. ఆర్బీఐ అంటుంది.
1: తెలివిగా ఆలోచించండి, అప్రమత్తంగా ఉండండి.
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान. पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान. आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए. इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन. सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन. उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान. नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितम्बर 2026 तक, तो देर किस बात की. आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर. राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी.
0: विविध भारती FM 101.3.

0: देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। इस वर्ष 3 विभागों से कुल 82 शिक्षकों और शिक्षाविदों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनमें स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के 48 शिक्षक, उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षक एवं संकाय सदस्य और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के 13 कौशल प्रशिक्षक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देश भर के शिक्षकों को नमन किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक केवल शैक्षणिक ज्ञान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली एक महान जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना चाहिए। श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय पर चिंता जताई।
1: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेलकूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा, फिर खेलकूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकते, और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
0: प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाने और उन्हें वास्तविक जीवन के कौशल तथा विभिन्न कार्यों से जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि शिक्षक ज्ञान कौशल और आत्मविश्वास के साथ छात्रों के भविष्य को सशक्त बनाते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में श्री जोशी ने महान विद्वान दार्शनिक और शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का यह कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। आज मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम

0: और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक मार्गों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। 22 से 28 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में वे भारत का पक्ष रखेंगे। ये उच्च स्तरीय सत्र ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया कई भू राजनीतिक संघर्षों और बढ़ते आर्थिक दबावों का सामना कर रही है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र में 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि 1907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास भारतीय शरणार्थियों को हवाई मार्ग से वापस लाने में मदद कर रहा है। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has called upon teachers to go beyond textbooks and play a greater role in preserving childhood while shaping the lives of students. He made these remarks while interacting with the National Teachers Day Award winners in New Delhi yesterday. While sharing the glimpses of the interaction with teachers in a social media post, the Prime Minister emphasized that teachers must ensure that the child within every student remains alive, and for that they should also preserve the child within themselves. He stressed that bringing about real change in children requires teachers to become a part of their lives rather than limiting themselves to the syllabus.
2: मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके, सिलेबस से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए, और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते। टीचर का काम है कि उसके भीतर का बचपन बना रहे।
1: Highlighting key health and social issues, Mr. Modi expressed concern over excessive screen time among children and suggested encouraging sports, outdoor activities and creative pursuits as effective ways to reduce screen addiction.
2: एक विषय है स्क्रीन टाइम। अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा। फिर खेल कूद मतलब वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकता। और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
1: President Draupadi Murmu has called upon teachers and educators to continually update their knowledge, embrace technology and adopt innovative teaching methods. In a message on the occasion of Teachers' Day today, the President said teachers and educators play a vital role in nurturing talent and strengthening character through their guidance and mentorship. President Murmu also paid tribute to former President Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. President Draupadi Murmu conferred the National Teachers Awards on 48 school teachers in New Delhi on the occasion of Teachers' Day. The 48 selected teachers are from 27 states, 7 union territories and 6 central government organizations. Vice President C.P. Radhakrishnan and Home Minister Amit Shah have extended their greetings on the occasion of Teachers' Day. Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Sri Ram College of Commerce, part of the University of Delhi, is one of India's premier institutions of higher education. It is a distinguished center of learning in commerce, economics and management. The government has proposed allowing up to 3-year permissions for importing and transporting petroleum in ISO tank containers and introducing a 7 working day deemed

0: by the government of Nepal. Meanwhile, the death toll from the floods in Himalayan nation rose to 1,344 after rescue workers recovered more bodies from affected areas. In Maharashtra, the Dahi Handi festival is being celebrated with great enthusiasm today. The festival is associated with Sri Krishna Janamashtami. On the occasion, young participants known as Govindas form tall human pyramids to reach and break an earthen pot filled with curd, milk or butter suspended high in the air, reenacting the childhood mischief of Lord Krishna. A report.
1: In Mumbai and some neighboring areas, Dahi Handi is a traditional celebration associated with the birth of Lord Krishna. The festival witnesses Govindas forming multi-tiered human pyramids to break earthen pots. In view of possible injuries, the BMC has directed its hospitals to remain fully prepared and provide free treatment to injured Govindas. Meanwhile, the Maharashtra government has announced insurance cover for 1,60,000 Govindas. Benefits ranging from 1 lakh to 10 lakh will be provided in case of hospitalization, permanent, total or partial disability. Prarthana, Akashvani News, Mumbai.
0: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar is set to address the annual high-level session of the United Nations General Assembly on 26th of this month. He will deliver India's national statement during the afternoon session of the general debate, which will be held from 22nd to 28th of this month. The Ministry of Coal has dismissed the reports claiming that the 37,500 crore rupees scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects has received no applications, calling such reports premature and factually incorrect. On to sports. In women's cricket, India will take on arch-rivals Pakistan in the final Group A clash of T20 Asia Cup at Dubai International Stadium tonight. The match will begin at 8 p.m. Indian Standard Time. India have already secured a place in the semi-finals after recording convincing victories over Thailand and Hong Kong in their previous two matches. The Indian team will now look to maintain its winning run and finish the group stage with a perfect record. Pakistan, meanwhile, have played just one match. They began their campaign with a win over Thailand. The team currently has 2 points in Group A and needs just one more point from its remaining two matches to qualify for the semi-finals. In badminton, Indian men's doubles pair Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will take on the Malaysian duo of Noor Mohammad Azreen Ayub and Tan Wik Yong in the semi-final of the China Masters in Shenzhen today. The Indian pair defeated Denmark's Kemar Stroop and Anders Karup Rasmussen 21-13, 16-21, 21-18 in the quarter-final yesterday. Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal today held an inter-ministerial virtual meeting with Jal Shakti Minister C.R. Patil and other senior officials to review preparations for Swachhata Hi Seva 2026. In a social media post, Mr. Lal said that as the campaign enters its 9th edition, the nation is renewing its commitment to a cleaner and healthier India. He urged citizens to come forward, participate wholeheartedly in the campaign and make Swachhata Hi Seva a true Jan Andolan. The Swachhata Hi Seva 2026 campaign will be observed from 17th of this month to the 2nd of October. The India Meteorological Department has issued orange colour warning for heavy to very heavy rainfall in East Rajasthan and West Madhya Pradesh for today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu says, Viksit Bharat will only be possible with quality education, confers national awards on 48 school teachers. Prime Minister Narendra Modi urges teachers to go beyond textbooks while shaping lives of students, also calls for less screen time, more sports activities for children. Prime Minister to address centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi this evening. Bihar flood situation remains critical in 14 districts, relief and rescue operations underway. India delivers 95 tons of relief material to flood-hit Nepal to send more supplies and Bailey bridges. In badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Malaysian duo in Chinese Masters semi-final in Shenzhen this evening. And in women's cricket, India to take on arch-rivals Pakistan in final Group A clash of T20 Asia Cup in Dubai tonight. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। उन्होंने बच्चों का स्क्रीन समय कम करने, खेलकूद और बाहरी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बेलीब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा और T20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वो सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है।
3: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो।
2: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता हैं।
3: द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को ये पुरस्कार दिए गए। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इनमें केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के 12, राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 5 तथा पॉलिटेक्निक के 4 शिक्षक और संकाय सदस्य शामिल हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में देशभर के शिक्षकों को उनकी निस्वार्थ सेवा और भारत के भविष्य को आकार देने में उनके योगदान के लिए नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना होगा। श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई।
4: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेलकूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा। फिर खेलकूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकता। और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
2: प्रधानमंत्री ने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
4: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस उसके कारण क्या भय है? प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
2: प्रधानमंत्री ने स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता का भी उल्लेख किया।
4: मैं काशी का सांसद हूं तो मैंने वहां एक अभियान लिया ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का, और मुझे खुशी है कि इन दिनों महिलाएं सामने से आकर के अपने विषय में चेकअप करा, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। दूसरा एक अच्छा अनुभव आया, अभी तो एक दिन में मैक्सिमम लोगों का चेकिंग करने का ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने रजिस्टर किया।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाने और उन्हें वास्तविक जीवन के कौशल तथा विभिन्न कार्यों से जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। गृहमंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देशवासियों और शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि शिक्षक पीढ़ियों से विद्यार्थियों को ज्ञान की राह दिखा रहे हैं और देश की निरंतर प्रगति में योगदान दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक वीडियो संदेश में कहा कि शिक्षक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ छात्रों के भविष्य को सशक्त बनाते हैं।
5: इन शिक्षकों ने अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीकों से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। किसी ने शिक्षण में नया प्रयोग किया है, किसी ने तकनीक का प्रभावी उपयोग किया है, किसी ने वंचित और कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए काम किया, तो किसी ने विज्ञान, खेल, कला और कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम किया है।
2: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
6: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे समारोह को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। यहां वाणिज्य, अर्थशास्त्र और प्रबंधन की पढ़ाई होती है। कॉलेज की स्थापना 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का मंच कल शुरू हो गया। शिखर सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। आज मोटर कारक्रीट का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक मार्गों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। 22 से 28 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में वे भारत का पक्ष रखेंगे। ये उच्च स्तरीय सत्र ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया कई भू राजनीतिक संघर्षों और बढ़ते आर्थिक दबावों का सामना कर रही है। हॉर्मुस जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र से 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। एक रिपोर्ट।
7: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 1907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास इन शरणार्थियों को हवाई मार्ग से वापस लाने में सहायता कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा हुआ नहीं है। प्रवक्ता ने बताया कि 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद से भारत ने नेपाल को लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता जारी रखेगा। आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर अधिक फोरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अतिरिक्त सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। बेली ब्रिज पूर्व निर्मित और मॉड्यूलर स्टील पुल होता है, जिसे कम समय में और बिना भारी मशीनों के आसानी से जोड़ा या स्थापित किया जा सकता है। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,344 हो गई है। खोज और बचाव अभियान जारी है। लगभग 5,000 लोग अभी भी

0: पत्र लीक का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि ये सिर्फ प्रश्न पत्र लीक नहीं बल्कि प्रश्न पत्रों की लूट थी।
1: जो कुछ झारखंड में तथ्य प्रकाश में आया है उसने यह साफ किया है कि ये पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर लूट है, और इस लूट की छूट कौन दे रहा है ये कम से कम राहुल गांधी जी को बताना चाहिए। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी राजनीतिक दल दिल्ली में परीक्षा के विषय को लेकर दहाड़ और चिंघाड़ रहे थे, झारखंड के मुद्दे के ऊपर तीन बंदर हो गए हैं।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषय की पुनर्परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। वाणिज्य की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। इन तीनों विषयों की परीक्षा पेपर में कुछ गलतियों की शिकायतों के बाद दोबारा आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। लगातार नदियों के उफान पर रहने से नए क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है। एक रिपोर्ट।
2: बिहार में गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। नदियों में उफान से 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। पटना समेत 14 जिलों में हालात गंभीर बने हुए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रही है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि इसके गांधी घाट गेज स्थल पर नया उच्च जलस्तर सृजित होने की आशंका है। इसके चलते नदी के प्रवाह क्षेत्र विशेषकर दियारा क्षेत्रों दबाव बढ़ सकता है। विभाग ने संबंधित जिलों को आपदा के मद्देनजर सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज राष्ट्रीय राजधानी के अलग अलग हिस्सों में हल्की से तेज बारिश हुई। और अब बात खेलों की। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज शेंजन में मेंस डबल्स सेमीफाइनल में मलेशियाई जोड़ी नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी कियोंग से खेलेगी। भारतीय जोड़ी ने कल क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन को हराया था। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। महाराष्ट्र में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: मुंबई और आसपास के जिलों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा पारंपरिक उत्सव दही हांडी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस आयोजन में युवा प्रतिभागी मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर लटके दही, दूध या मक्खन से भरी मटकी फोड़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के बीमा कवरेज की व्यवस्था भी की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बिलीब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा। और टी20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिक

0: जी जी धन्यवाद आपके सवाल के लिए। हालांकि एक चीज कही जाती है, इफ इट एंट ब्रोकन डोंट फिक्स इट, और ओपनिंग एक ऐसी चीज है भारत के लिए जो लगातार रिवॉर्ड्स दे रही है सभी।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि जिसे मोमेंटम ब्रेक नहीं करना चाहिए, और जब आपकी ओपनिंग पेयर जो है, जब आपको एक स्ट्रांग फाउंडेशन दे रहे हैं एज अ बैटर्स, वो जब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान जैसे क्रंच गेम में है ना किसी भी तरीके के ज्यादा बदलाव की जरूरत है। और जब आप विनिंग कॉम्बिनेशन जो आपके हैं जब वो परफॉर्म कर रहे हैं, और टीम जब बहुत दो अच्छी बड़ी विक्ट्री दर्ज करके आ रही है इस गेम में, तो और वैसे तो ऑलरेडी इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन जैसे उन्होंने सजेशन दिया है वो ठीक है, लेकिन टीम मैनेजमेंट भली भांति जानता है कि भले ही आपका पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा हो, 14-3 का रिकॉर्ड है, और आपने एशिया कप में भी वो डोमिनेंस दिखाई भी है, लेकिन जब पाकिस्तान के साथ गेम आता है तो एक अलग तरीके का प्रेशर तो रहता ही है, फील्ड पर भी रहता है, एक्सटर्नल प्रेशर भी रहता है, और वो जो कहते हैं ना बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस, वो रहती ही रहती है। और ये एक सिर्फ इंडियन प्लेयर्स के साथ ही नहीं, वो पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ है, क्योंकि जीतना का जज्बा तो दोनों तरफ ही है, लेकिन एक जो भारी दबाव भी है जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर, वो भी रहता है। तो ऐसे में
2: जंट में लुकुंदी हे।

0: 20. I am Walsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reiterates 7.8% GDP growth amid global uncertainty reflects India's economic strength. Addresses SRCC students in New Delhi. President Draupadi Murmu stresses teachers' role in nurturing independent thinkers to create future entrepreneurs and scientists. India and Nepal continue joint operation to rescue people trapped inside hydropowered project tunnels in Nepal hit by flash floods. Melghat and Pinch Tiger Reserves in Maharashtra emerge as most successful reintroduction sites for vultures. Heavy rainfall forecast in northern, northeastern states, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, East Rajasthan, Delhi and Madhya Pradesh till Monday. And in China Masters Badminton, Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty enter the men's doubles final. Prime Minister Narendra Modi today said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi, Mr. Modi said the world is watching India become the fastest growing major economy.
1: Duniya Bharat ko fragile five bata rahi thi. आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने से हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
0: द प्राइम मिनिस्टर सेड एसआरसीसी हैज गिवन जेनरेशंस ऑफ स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू लर्न ग्रो एंड मेक अ डिफरेंस ओवर द इयर्स। मिस्टर मोदी सेड द कॉलेज हैज डिस्टिंग्विश्ड इटसेल्फ ओवर द इयर्स मेकिंग अ मार्क फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। ही टर्म्ड द एलुमनाई ऑफ एसआरसीसी एज वेरी स्पेशल एंड द ओजीज। The Prime Minister stated that former Finance Minister Arun Jaitley was an alumnus of SRCC. He said SRCC alumni have left their mark in every sector from arts to politics. He added that together 140 crore Indians will make India both Vikasit and Atmanirbhar.
1: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में एसआरसीसी ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।
0: Education Minister Prahlad Joshi in his speech praised SRCC for maintaining its high standards over the years. He said today, India is the third largest startup ecosystem under the leadership of Prime Minister Modi. The Prime Minister travelled by the Delhi Metro as he headed to SRCC to participate in the college's centenary celebrations.

0: आकाशवाणी है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है।
2: होनी नहीं चाहिए इस चेज को करते हुए,
3: और खास करके सभी अभी तक हमने एशिया कप में देखा है कि पहले 6 ओवर में जब बॉल खास करके हार्ड रहता है तो रन स्कोरिंग और आसान होता है।
4: बिल्कुल, जिसमें अब 55 रन में हम कितने ही बॉलिंग ऑप्शंस को मतलब कि इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो मुझे कोई कॉन्टेस्ट नजर ही नहीं आ रही है। कुछ रन्स बनते तो पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं, जिसमें हम बार बार लतीका जी कह रहे हैं कि वो बहुत ही एक पोटेंट वेपन है पाकिस्तान के पास, बट आप 55 रन में कहाँ, मतलब 56 रन का टारगेट है, कितना ही डिफेंड कर लेंगे आप 1-2-3 विकेट, क्योंकि मेरे को लगता है कि भारत यहाँ पे एक स्टेटमेंट विन रजिस्टर करना चाहेगा। 55 पे आउट कर ही दिया है और वो चाहेगा कि है ना जल्द से जल्द ये मैच खत्म करके, जिसे कहते हैं कि बुरी तरह रौन देना, क्योंकि सेमीफाइनल में भारत ने अपनी जगह बनाई ली है। तो जो भारत है वो इस मोमेंटम को बनाए रखना चाहेगा और एक जिसे कहते हैं ना डोमिनेटिंग कमांडिंग विन को रजिस्टर करके, और वो है ना सेमीफाइनल में बढ़ना चाहेगा। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान के ऑप्शंस भी हैं, जो चारों ऑप्शंस, वो भी मुझे लगता नहीं है कि उनके पास भी कुछ रहेगा। जैसे बता रहे हैं कि तूबा है, उमे है या सादिया है, वो ठीक है, वो मतलब वही एंड में वही बात आती है कि आपके पास रनस ही नहीं है उतने, तो आप क्या ही डिफेंड करेंगे। बट देखते हैं कि कुछ क्या 1-2 विकेट्स चटका पाते हैं पाकिस्तान या नहीं।
5: ऑफ कोर्स, और आप हमारे शो को ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर है 011-2342-1084। आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, सवाल है हमारे एक्सपर्ट्स के लिए, या आप कोई विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं, तो प्लीज कॉल करिए और ज्वाइन करें हमारा शो। और देखा जाए तो लतिका जी, ये जो पाकिस्तान ने जो टारगेट दिया है, ये इंडिया के लिए तो लग रहा है हमें कि आसान होगा, मगर नेट रन रेट भी बहुत क्रूशल है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान एक ही मैच खेला है, तो दूसरे मैच में अगर आज कॉम्प्रिहेंसिवली हार जाता है तो उनका नेट रन रेट बहुत कम हो जाएगा, एंड अभी एक मैच बाकी है हांगकांग के खिलाफ।
2: बिल्कुल, देखिए एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में अगर आप आते हैं एक डोमिनेंस टीम के साथ आते हैं, और इंडिया ने ये साबित भी किया अभी तक जितने भी गेम हुए हैं कि डोमिनेंस के साथ वो यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी ये कोशिश थी जो पिछले मैच खेला उन्होंने, उसके बाद इस तरह की परफॉर्मेंस आना थोड़ा सा निराशाजनक जरूर लगता है। और हाँ, आगे आने वाले उसमें नेट रन रेट कितना नुकसान पहुंचा सकती है पाकिस्तानी टीम को, वो तो आज का मैच जब खत्म होगा तब पॉइंट टेबल जो निकल के आएगी उस पर हम देखेंगे कि किस तरीके से पाक अपनी पोजीशन को बनाए रखता है।
3: जी बिल्कुल, और अभी जो स्थिति बनी हुई है, भारत ने 2 मुकाबले अभी तक खेले हैं, जो 2 पूरे मुकाबले हैं जिसमें 4 पॉइंट अपने नाम किया है। पाकिस्तान के लिए ये दूसरा ही मुकाबला है, पहले मुकाबले में जीत हासिल की थी, तो हालांकि लग रहा है क्योंकि हांगकांग के विरुद्ध उतरेगी पाकिस्तान की टीम, तो ओवरऑल सेमीफाइनल तक तो शायद पहुंच ही जाए, लेकिन अगर इस तरह की स्थिति में आती है जब टीम अपने लोएस्ट स्कोर पे ऑल आउट हो जाती है तो मनोबल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ध्वस्त कर सकता है ऐसा मैच टीम को।
4: बिल्कुल, अगर जैसे अगर आज वो पाकिस्तान, देखिए रन रेट का तो एक फर्क पड़ेगा ही, 55 रन के साथ आप मतलब डिफेंड कितना ही कर पाएंगे, लेकिन चलिए अगर आप ये मैच नहीं भी जीत पाते जो कि लग ही रहा है जिसका आउटकम, तो अब आप सेमीफाइनल हांगकांग से आप खेलेंगे, हांगकांग के खिलाफ आपको एक अच्छी जीत दर्ज करनी पड़ेगी, क्योंकि सेमीफाइनल है, नॉकआउट है, अगर आप हांगकांग के खिलाफ भी जैसे तैसे करके जीत के पहुंचते हैं तो आपका मोरल तो डाउन रहेगा, क्योंकि इंडिया के मैच ने तो आज आपका मोरल बिल्कुल ही डाउन कर दिया होगा, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो होगा। हांगकांग के अगेंस्ट पाकिस्तान एक अच्छी विक्ट्री दर्ज करना चाहेगा, और ऐसा एक्सपेक्टेड भी है कि शायद वो बेहतर परफॉर्म कर सके, क्योंकि उतनी पोटेंट बॉलिंग शायद हांगकांग की नहीं होगी, और शायद जहां तक है वह पाकिस्तान के स्पिनर्स जो हैं वो हांगकांग को है ना, हांगकांग के बैटर्स को घेर भी लेंगे, तो हांगकांग से जीत जाएंगे, लेकिन अगेन फिर जब सेमीफाइनल में आएंगे तो वहां पर मुझे लगता है कि फिर से बहुत मुश्किल होगी पाकिस्तान को।
2: लेकिन मैं यहाँ एक बात बोलना चाहूंगी, हांगकांग की गेंदबाजी ने जो असर दिखाया था भारतीय टीम के अगेंस्ट, तो उनको भी हल्के में नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि आज अगर पाकिस्तान की टीम भारतीय गेंदबाजी के सामने इस तरीके से लड़खड़ाई है तो अगला मैच यहां से किस तरीके से जाता है वो देखना होगा।
3: जी बिल्कुल, काफी दिलचस्प होने वाला है ये एशिया कप टूर्नामेंट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना सारा विश्लेषण देने के लिए, और अभी सीधे चलते हैं और लाइव एक्शन से जुड़ते हैं। भारतीय टीम 56 रन का टारगेट चेस करती हुई।
0: मैच का आंखों

0: सौदे का हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच महिला एशिया कप 2020 2026 का यह मुकाबला, जिसमें भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी की और पाकिस्तान की टीम को सस्ते में समेट दिया और भारतीय बल्लेबाजी की शुरुआत हो चुकी है। पहली गेंद, और पहली गेंद पर ही शेफाली वर्मा ने लॉक कर दिया इस गेंद को सामने की तरफ लॉन्ग ऑफ पर 6 रन के लिए। भारतीय पारी की शुरुआत 6 रन के साथ। मैं धर्मेंद्र मणि राजेश, अपने साथी अंग्रेजी कमेंटेटर डॉक्टर मिलिंद टिपनेस, स्कोरर भागवत सिंह रावत, स्टैटिस्टिशियन प्रदीप कुमार तुम्बडे के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। अगली गेंद को एक बार फिर से खेला है शेफाली वर्मा ने 1 रन के लिए, और इस 1 रन से भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन बगैर किसी नुकसान के। लक्ष्य बहुत छोटा आज भारत के सामने, सिर्फ 56 रन का। भारतीय स्पिनर्स ने आज कमाल की गेंदबाजी की, पाकिस्तान की पूरी टीम को सिर्फ 55 रन पर समेट दिया, जो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की महिला टीम का न्यूनतम स्कोर है। शेफाली वर्मा ने इसके साथ ही विमेंस T20 क्रिकेट में 3000 रन पूरे कर लिए हैं। अगली गेंद इस बार स्मृति मानधना के लिए, ऑफ स्टंप पर टर्न होकर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद छोड़कर जा रही थी, बल्ला चलाया था। स्मृति मानधना ने एक अपील जोरदार गेंदबाज सादिया द्वारा, यह गेंद पड़ने के बाद टर्न होकर बल्लेबाज को छोड़कर निकल रही थी, जगह बनाना चाह रही थी स्मृति मानधना स्ट्रोक के लिए, बीट हुई। किस्मत वाली रही कि गेंद ने बल्ले का किनारा नहीं लिया। अगली गेंद इस बार शरीर से दूर, बढ़िया स्ट्रोक मिड ऑफ की तरफ, 1 रन के लिए जरूर जाएंगी, और ये 1 रन अंत में आसानी के साथ पूरा हुआ है। स्कोरिंग की शुरुआत हुई स्मृति मानधना के लिए और भारत का बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन बगैर किसी नुकसान के। दिलचस्पी की बात सिर्फ यही है कि भारत 56 रन के इस लक्ष्य को कितने ओवर्स में पूरा करता है। जीत तो लगभग भारतीय टीम की तय दिखाई दे रही है। शेफाली वर्मा के लिए यह गेंद इस ओवर की 4th गेंद, उसको फ्लिक कर दिया है ऑन साइड में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, दोनों बल्लेबाज भाग पड़ी 1 रन के लिए, और इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन बगैर किसी नुकसान के। कोई संघर्ष ही आज पाकिस्तान की बल्लेबाजों ने किया नहीं, भारत की स्पिन गेंदबाजों का। अगली गेंद स्मृति के लिए, स्मृति ने एक बार फिर से शरीर से दूर इस गेंद को खेलने का प्रयास किया, बीट हुई। ओवर की समाप्ति। इस पहले ओवर में सादिया इकबाल के कुल मिलाकर भारत ने बनाए 9 रन बगैर किसी नुकसान के। शेफाली वर्मा 8 रन बनाकर स्ट्राइक पर होंगी नए ओवर में, और स्मृति मानधना ने अभी तक 1 रन बनाया है।
2: सो द टारगेट फॉर इंडिया इज 56 आफ्टर पाकिस्तान वेयर बोल्ड आउट टुडे फॉर 55 इन 18.1 overs with a run rate of 3.03, and the highlight of the Indian bowling was Sri Charney picking up 3 wickets for 7 runs, Pebarawa 3 wickets for 9 runs, and Dipti Sharma with 2 for 5 taking her tally up to 176 wickets, the highest by far in women's T20 internationals. So it is going to be Fatima who will be bowling the first over. Shefali Varma was the one who gave India the breakthrough after Pakistan openers Muniba Ali and Shawal Zulfikar had put on 27 runs for the opening wicket. It was Shefali Varma, and Shefali Varma opening the innings started off with 6 of the very first ball. The next one is a quicker one outside the off stump onto the back foot. Shefali goes and plays the ball on the offside, not for runs. Shefali Varma in that first game against Thailand made 64 of 36 balls with 8 fours and 3 sixes and was the player of the match. And her non-striking partner is Smriti Mandana, who was run out in that first game against Thailand after she made 19, was run out in the second game as well. But what a sensational that knock was. 124 runs, more about that. This has been lofted over the infield by Shefali Varma, and it runs away down to the boundary for 4. Takes the score into double figures, and the way Shefali has shown the intent, it seems that India would be keen to finish the match in the power play itself. 114th match for Shefali.

0: पहली गेंद पर उन्होंने छक्का भी जड़ा था, लेकिन फातिमा सना पाकिस्तान की कप्तान जब गेंदबाजी के लिए आई तो भारतीय बल्लेबाजी पर अचानक सा दबाव आता हुआ दिखाई दिया है। दोनों सफलताएं अभी तक फातिमा सना के इस पिछले ओवर में ही आई हैं। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अपना पहला विकेट 27 के स्कोर पर गंवाया था और उसके बाद पाकिस्तान की टीम लड़खड़ाई थी। दूसरी तरफ भारत ने 18 रन के स्कोर पर दो विकेट गंवा दिए हैं। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद और सादिया की पहली गेंद को स्मृति मानधना ने खेल दिया है कवर की तरफ, रन नहीं। अगर दोनों गेंदों की बात करें तो जिस गेंद पर प्रतीका रावल आउट हुई हैं, रफ्तार से चकमा खा गई, ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा निकल रही थी स्विंग होकर गेंद और उस पर बल्ला चलाया था, बल्ले का किनारा लिया उस गेंद ने और एक कैच विकेट के पीछे लपका गया था। इस बीच में अगली गेंद जिस पर एक रन आएगा भारत के लिए और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 दो विकेट के नुकसान पर और ये रन लेग बाई के रूप में आया है। स्मृति मानधना गेंद को ठीक तरीके से खेल नहीं पाई थी, गेंद उनके पैड पर टकराई थी और गई थी फाइन लेग की तरफ। भारत को निगाह रखनी होगी, हड़बड़ाहट नहीं दिखानी होगी। लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है लेकिन छोटा लक्ष्य भी कई बार मुश्किलें साबित कर जाता है। इस बात से चौकन्ना रहना होगा भारतीय टीम को। भारत की कप्तान और उपकप्तान की जोड़ी समय मैदान पर, हरमनप्रीत कौर पहली बार स्ट्राइक पर। भारत को पिछले दो मुकाबलों में अच्छी शुरुआत मिलती रही थी, एक साझेदारी बनती रही थी, लेकिन इस मुकाबले में शेफाली वर्मा के जल्दी आउट होने के बाद वो शुरुआत भारत को मिली नहीं है। अगली गेंद पैट पर जिसको टर्न के साथ ही खेल दिया ऑन साइड में एक रन के लिए हरमनप्रीत कौर ने और इसके साथ ही उन्होंने अपना खाता खोल लिया। स्कोर हो गया भारत का 20 दो विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर चल रहा है सादिया इकबाल का, यह दूसरा ओवर महंगी रही है थोड़ी सी। अपने पहले ओवर में उन्होंने अच्छे खासे रन खर्च किए थे, कुल मिलाकर 9 रन दिए थे और इस दूसरे ओवर में अभी तक एक रन उन्होंने दिया है, एक रन अतिरिक्त के रूप में आया है। और सादिया इकबाल के इस ओवर की चौथी गेंद अब सामने है स्मृति मानधना। फ्लाइटेड गेंद जिसको क्रीज से बाहर निकलकर खेला कवर की तरफ, लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर सके, टाइमिंग उतनी अच्छी थी नहीं, बिल्कुल ब्लॉक होल में थी ये फ्लाइटेड गेंद जिसको अपने विकेटों से दूर ढकेला स्मृति मानधना ने। जो उनकी पिछली पारी रही थी पिछले मैच में, यादगार, दर्शनीय, अलौकिक कह सकते हैं। गेंद कुछ बार बैकफुट पर जाकर खेला लेकिन फिर से उसी फील्डर के पास कवर में फिर से कोई रन नहीं। आज शुरुआत में थोड़ी सी परेशान दिख रही, थोड़ी सी मुश्किल में दिख रही है स्मृति मानधना। पहली गेंद पर उनके खिलाफ अपील हुई थी सादिया इकबाल की ही गेंद पर, इस बार हवा में उठाकर खेला इस गेंद को फील्डर के ऊपर से और इस बार चौका मिलेगा। बढ़िया टाइमिंग के साथ, बढ़िया नियंत्रण के साथ खेला गया स्ट्रोक स्मृति मानधना का और इस चौके के साथ उनका व्यक्तिगत स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। भारत का स्कोर 3 ओवर के बाद 24 रन दो विकेट के नुकसान पर। सादिया इकबाल का एक और महंगा ओवर, 2 ओवर 14 रन, कोई सफलता नहीं।
1: So with a run rate of 8 runs per over, India then are 24 for 2. The two batters out today in the Indian inning, Shefali Verma, cotton ball, Fatima Sana for 12 of 6 balls, 1 for 16, and Pratika Rawal caught by Munima, the wicketkeeper of Fatima, for 4 of 3. Following wickets, 1 for 13, Shefali Verma, 2 for 18 was Pratika Rawal. The battery in form for India has been Smriti Mandana, 19 in that first match when she was run out against Thailand. But what a wonderful knock she played, 124 once again run out, 64 balls, 14 fours and 7 sixes with a try rate of 193.75, surpassed Mithali Raj who had 10,868 runs to become the leading run getter in the women's internationals. With 18 hundreds, she has now tied with Meg Lanin for most hundreds in international crickets across formats. Wonderful shot from Smriti Mandana. Remember, she got her first T20 hundred against England, 112 of 62 balls. That was on the 20th of June 25 at Trent Bridge. As we are now watching Fatima, India need just 32 runs of 100.

0: सा परिवर्तन किया गया है। और जहां तक बल्लेबाजी की बात है, ऋचा घोष की जगह इस बार दीप्ति शर्मा को बल्लेबाजी में ऊपर भेजा गया है। अगली गेंद को सीधे बल्ले से सामने की तरफ खेल दिया हरमनप्रीत कौर ने, कोई रन नहीं। जहां तक पाकिस्तान की बल्लेबाजी की बात है, एक से छह ओवर के बीच पाकिस्तान ने 29 रन बनाए थे, 3 विकेट गंवाए थे, 23 डॉट गेंदे थी, 4 चौके आए थे। इस बीच में तैयार सादिया इकबाल इस ओवर की चौथी गेंद के साथ, क्रीज से बाहर निकलकर इस बार टर्न के साथ गेंद को ऑन साइड में खेला, मिड ऑन की तरफ तेजी के साथ भाग पड़ी थी दोनों बल्लेबाज एक रन के लिए, और वो रन अंत में आसानी के साथ पूरा हुआ। 30 पर पहुंचा भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। फिर पाकिस्तान ने 7 से 16 ओवर के बीच कुल मिलाकर 19 रन जोड़े, 5 विकेट गंवाए और उस दौरान सिर्फ एक चौका आया था, और 17 ओवर से लेकर 19.1 ओवर के बीच 7 रन बनाए, 2 विकेट गंवाए थे जिसमें एक चौका आया था। कुल मिलाकर 19.1 ओवर में पाकिस्तान की टीम 55 रन पर ऑल आउट हो गई जिसमें 6 चौके शामिल थे। कुल मिलाकर 78 ऐसी गेंदें रही थी पाकिस्तान की पारी में जिसमें कोई रन नहीं आया था। इस ओवर में 2 गेंद अभी भी बाकी है और स्ट्राइक पर पहली बार दीप्ति शर्मा, 5वीं गेंद इस ओवर की, खेलने के लिए तैयार। 92 गेंदों में भारत को चाहिए 26 रन। इस पहली गेंद को दीप्ति शर्मा ने खेल दिया है कवर की तरफ, रन नहीं मिलेगा, फील्डर वहां पर मौजूद, रन की संभावना थी भी नहीं। टॉप स्कोरर की बात करें तो दुबई क्रिकेट स्टेडियम में स्मृति मानधना, जो अभी अभी आउट होकर वापस गई हैं, उन्होंने 6 मैच में 221 रन बनाए थे। अगली गेंद इसको सुरक्षात्मक तरीके से खेला है, ओवर की समाप्ति, और इसके साथ ही कुल मिलाकर भारत की पारी में 5 ओवर की समाप्ति। पावर प्ले चलता हुआ भारत की पारी में 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर, दोनों सलामी बल्लेबाज और तीसरे नंबर की बल्लेबाज भारत की तरफ से वापस पवेलियन।
1: सो द रिक्वायर्ड रन रेट इज 1.67 फॉर इंडिया, जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस, बट एटलीस्ट पाकिस्तान देन हैव पिक्ड अप 3 विकेट्स बिकॉज वन कैप्टन वन विंग in the break, whether India could win this match by 10 wickets. That's not been the case because Fatima Sana, the captain of the Pakistan team, who was out without scoring LBW to Dipti Sharma, has really bowled exceedingly well. She has picked up 3 wickets and her bowling figures have been 2 overs, no maidens, 14 runs and 3 wickets. After 5 overs, Pakistan were 27 for 1. India in reply are 31 for 3. So had Pakistan put up at least 100-125 runs on the board, they could have really made a match of it. As here is Fatima now in to the left-hander, and this time Dipti is pushing it on the onside. Need 25 runs off 89 balls. Harmanpreet would be hoping to take India home because she hasn't really been in the best of forms with the bat. The Indian middle order has been found wanting throughout the Asia Cup against Thailand too. They lost wickets in a heap, and against the Hong Kong China Women, the top order clicked with Smriti Mandana getting that wonderful 100 as the next ball has been lofted high up in the air. Will the fielder be able to get anywhere near it? Is remember the power play, so not many fielders outside the 25 yard circle. The ball goes up in the air, then it lands onto the earth, and in the meantime the batters picked up 2 runs in the process, taking the total up to 33 for the loss of 3 wickets. The inaugural year 2004, then 2005, 2006, 2008, the tournament was held in an ODI format, and for the first time in China in 2012, and thereafter in 2016, 18, 22 and 24, it was played in the T20 format. Bangladesh won in 2018. Sri Lanka, the defending champions, this time the ball is striking. Left-hander Dipti on the pads. A very loud appeal, a very optimistic one from Fatima Sana. But I thought it was more of optimism rather than anything else because the ball was drifting down the leg side. But Fatima has certainly bowled well. She has mixed up the pace. She has used the line well. And she has shown aggressive instinct because quite often they're not. When the target is 56, the fielding side might just lose the battle in the mines. the shoulders would be down, the heads would be drooping, but not with the Pakistan team. And Fatima Sana

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की जीडीपी वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर 72 घंटे के लिए हमले रोकने का आदेश दिया। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत अवरोध से नीतिगत गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एसआरसीसी के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एसआरसीसी ने वर्षों से छात्रों की कई पीढ़ियों को सीखने, आगे बढ़ने और समाज में बदलाव लाने का अवसर दिया है।

0: विद्वान श्री वाराणसी काली प्रसाद बाबू अपने मृतंगम लय विन्यास का समापन मिश्र चापू ताल से कर रहे हैं।
1: विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू कंक्लूड्स हिज मृदंग लय विन्यासम विद मिश्र चापू तालम।

0: इसी के साथ आज के इस राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू द्वारा मृदंग लय विन्यासम अब संपन्न होता है। उनके साथ वायलिन पर संगत कर रही थी सुश्री वीएसपी गायत्री शिवानी। ये राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आपके लिए प्रस्तुत किया गया।
1: With that, we conclude the Mridanga Lai Vinyasam by Vidwan Sri Varanasi Kali Prasad Babu in the broadcast of National Program of Music. He was supported on violin by VSP Gayatri Shivani. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for National Program of Music and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: प्रस्तुत है संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में विठल कुमार राजपुरा का पखावज वादन। इंदौर की सांगीतिक माटी से जुड़े और प्रतिष्ठित नाना साहब पानसे घराने के होनहार पखावज वादक श्री विठल कुमार राजपुरा जी आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। श्री राजपुरा जी ने पखावज वादन की गहन शिक्षा आकाशवाणी के ही टॉप ग्रेड कलाकार पंडित गोस्वामी श्री देवकी नंदन जी महाराज से प्राप्त की है। विठल जी की वादन शैली की सबसे बड़ी खूबी है उनके बोलों की स्पष्टता।

तैयारी और छवि पर्णों का अलौकिक वादन जो सीधे रसिकों के दिल में उतर जाता है। राष्ट्रीय युवा उत्सव में स्वर्ण पदक विजेता कल के कलाकार और निर्माण प्रतिभा